0: कमाल की आवाज है तुम्हारी। मेरा ही गाना मुझसे भी अच्छा गाया तुमने। मैं तुम्हें सदी की सबसे बड़ी सिंगर बनाना चाहता हूँ। भरोसा करती हूँ मुझ पे?
1: इस दिन का बहुत इंतजार किया था मैंने। I love you।
0: I want to work again यार। अब मैं अकेला नहीं हूँ।
2: कोई काम नहीं करना चाहता तेरे साथ राहुल। It's all over।
3: ये लड़की जितनी भी ऊपर चढ़ेगी उतना ही नीचे गिरेगी राहुल को संभालने में।
4: जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा

0: कर इतना ही डर था, तो इतने पास क्यों आए तुम?
1: सब खत्म हो गया।
0: मैं जा रही हूँ तुमसे और इस कामयाबी से दूर।
2: मेरी आशिकी अब तुम ही हो।
3: Yes, that's the trailer from the movie Aashiqui 2. We're gonna have the feature song now. It's done by Arijit Singh and Palak Muchhal, and the song is Meri Aashiq. Yes, Palak Muchhal and Arijit Singh with Meri Aashiq.